क्या सीखा सिदर मुआविया ने उम्रे से, सबक लिया कि नहीं लिया? कि अल्लाह ताला के घर का तवाफ करना है, अल्लाह ताला के घर की बरकत दलील के साथ जुड़ी हुई है, अकल की बुनियाद पर नहीं की कभी भी। अल्लाह ताला घर में बरकत है। एक नमाज कितनी के बराबर है सवाब में? 1,00,000। यह बरकत है। लेकिन यह किसी ने कहा कि यह भी बरकत है कि काबे की दीवारों को हाथ लगाना है, फिर उसको चुमरे सिवा हजर असद के दीवारों को हाथ लगाना है, दूसरे अरकानों को हाथ लगाना है। बाज लोग देखते हैं जमीन पर, जमीन को बोसा देते हैं, ये जो मार्बल लगे हुए हैं, ये पता नहीं किस अफ्रीका के पहाड़ी से आए हैं, अब इसको क्यों बोसा देते हो भाई? अल्लाह घर बाबरकत है, नमाज पढ़ो, यानी नमाज में बरकत है, अल्लाह ताला के जिक्र में बरकत है, कुरान की तिलावत में बरकत है, अब इस मार्बल को बोसा दे रहे हो, पता नहीं अफ्रीका किस जंगल किस पहाड़ी से आया, इसकी क्या कीमत है? इसकी कदर कीमत इसलिए कि अल्लाह के घर में है, बस इससे ज्यादा नहीं है कि आप उसको बोसा दें। सुभान अल्लाह, सहाबा कराम समझ लेते थे। हमने अपने उम्रे से क्या समझा है? बस दो मिसालें मैंने दी हैं, कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी है, वरना बात जितनी लंबी करेंगे और भी बात लंबी होती जाएगी। और माशाल्लाह सब माशाल्लाह समझदार है, और कहते हैं पढ़े लिखे ज्यादा समझदार होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लाही उम्र में बहुत सारे अजीम पैगाम हैं, अजीम पैगाम है वल्लाही। अगर मैं यहाँ पे गिनना शुरू कर दूँ तो 1 घंटा और भी लग जाएगा। लेकिन तौहीद का पैगाम, इत्तिबाए सुन्नत का पैगाम, फ़राइद की अदायगी का पैगाम, मुहर्रमात से इज्तनाब का पैगाम, एहराम में क्या पैगाम है, एहराम से हमने क्या सबक सीखा है? पता है जब एहराम नियत, एहराम असल नियत है, और फिर जो हम ये सफ़ेद चादरें पहनते हैं मर्दों के लिए, ये हम क्यों पहनते हैं? कफन है कि नहीं? कफन क्या होता है? ये सफ़ेद चादरें होती या नहीं होती? कि हमने मरना भी है, और जब मरेंगे क्या साथ लेके जाएंगे? खुश नसीब को ये कफन ही काफ़ी होता है, खुश नसीब को ये कफन ही नसीब होता है। सुभानअल्लाह, तो गोया क्यों उम्र ऐसे हम करें, हो सकता है कि अगली मरतबा में मौका ही ना मिले उम्र करने का, वो हम कब्र के अंदर हो। एहराम में, एहराम से हमने क्या ये नहीं सीखा कि वक्ती तौर पर बाज हलाल चीजें हमारे ऊपर हराम हो गई हैं? मर्दों के लिए सर को ढांपना हराम की हालत में जायज है? जायज नहीं है। टोपी पहनना जायज है हराम की हालत में? हराम है, जायज नहीं है। इसीलिए कपड़े पहनना तोब है, कमीज है, जायज नहीं है। खुशबू लगाना जायज नहीं है। ये सारी चीजें हलाल है या हराम है? एहराम से पहले हलाल है ना, अब वक्त तौर पे हराम हो गई हैं। हमने क्या कहा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कि हमने इस हलाल को भी छोड़ दिया है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। एहराम से फारिग हो गए, उमरा कर लिया, अब आपने देखा क्या? अब तो अल्लाह का शुक्र यहां पर मना कर दिया सिगरेट नोशी, वरना स्मोकिंग आप देखते होते, वल्लाह एहराम अभी पहना हुआ है, लोग स्मोकिंग करते रहते थे, सिगरेट नोशी कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो? कहते यार बुरी आदतें छूट जाएगी, अल्लाह के घर में तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तो हम हर जगह पे अल्लाह का शुक्र है इन्होंने मना कर दिया, हरमैन शरीफ को पाक करना चाहते स्मोकिंग से, अब मुश्किल से कोई नजर आता, कोई छुप छुप के कर रहा होता तो अलग बात है, अब सीना तान के पहले की तरह लोग नहीं करते। आपने नहीं देखो, अभी देखा किसी ने? देखा है आपने? वाराणसी तकरीबन 5-6 साल पहले, 10 साल पहले भी हम देखते थे तो लोग धड़ाधड़ चलते थे, इस तरीके से स्मोकिंग करते थे। तो इस बंदे ने क्या पैगाम लिया है? अभी एहराम के कपड़े उतरे नहीं, अभी सर के बाल मुंडवाए फौरन, जैसे रमजान में क्या होता है इफ्तारी में, लोग बाज लोग इफ्तारी में पता किसी इफ्तारी करते हैं सिगरेट से इफ्तारी करते हैं, कहते मैं बस सिगरेट अगर नहीं पीऊंगा तो फिर मैं मर जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। लोग सुन्नत के मुताबिक खजूर खाता है या पानी पीता है, ये बदबخت बंदा सिगरेट से अपना रोजे की इब्तिदा करता है, अस्तगफुरुल्लाह। ऐसे भी बदबخت लोग मौजूद हैं, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और इन मुजी बीमारों से अल्लाह ताला हमें दूर फरमाए। अलगर्ज, तो हमें एहराम से भी कुछ सीखना चाहिए कि नहीं? जो हलाल चीजें वक्ती तौर पर हमारे ऊपर हराम थी, अब अल्लाह ताला मैं ये वादा करता हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जो भी हराम है ता कयामत में हराम पे, अब हराम के करीब नहीं जाऊंगा मैं। सूद हराम है कि नहीं? हराम है।